परमेश्वर नु कहंदे हन तेरा नाम रूड़ो रूप रूड़ो अत रंग रूड़ो मेरो रामैया रूड़ो कहंदे ने सोना ऐ परमेश्वर तेरा नाम बड़ा सोना है रूप रूड़ो तेरा रूप बड़ा सोना है अत रंग रूड़ो बहुत ही सोना ते प्यारा मेरा

तुरते तुरते चले गए। प्यास लगी, पानी दी पाल की थी, एक खूह नजर आया। उस खूह दे कोल जदों गए तां देखिया कि पहला भी कुछ लोग खलोते हुए पानी पानी कर रहे सन, क्योंकि पानी बहुत नीवा सी। खूह दे विचों ओ पानी कढ़ना बड़ा औखा सी। संत ज्ञानेश्वर अते नामदेव जी पहुंचे खूह दे कोल। पानी देखिया बहुत डूंगा है, बहुत नीवा है। पानी कढ़न वास्ते कोई इन्नी रस्सी भी नहीं। ता संत ज्ञानेश्वर जेड़े के पहुंचे हुए महापुरश सन, अपनी शक्ति दे नाल खूह दे विच उतरे, पानी पीता। पानी फिर भर के शक्ति दे नाल खूह तो बाहर आए, चेलिया नू पियाया, कुछ लोकां नू भी पियाया ते नामदेव नू कहा, नामदेव तू भी पानी पी लै। नामदेव जी कहन लगे, मैं पानी नहीं पीना जेड़ा तुसी लेके आए हो। संत ज्ञानेश्वर कहन लगे, फिर नामदेव तू भी शक्ति दा मालक है, तू भी भगत है, तेरे विच भी शक्ति है, तू आप अपनी शक्ति दे नाल खूह दे विच जाके पानी पी के ते खूह दे बाहर आ जा। ए सुन के नामदेव जी कहन लगे संत ज्ञानेश्वर नू, मैं पानी तां पीना है जे मेरा रमैया मैनू पानी पियावे, नहीं तां मैं पानी नहीं पीना, क्योंकि मैं ओदे नाल प्यार करना ते ओदा फर्ज बनदा है कि ओ साडी प्यास बुझावे। ए कह के नामदेव जी उसे खूह दे कोल बैठ गए, हाथ विच खड़ता।

कर दिए। मानसरोवर हंसला, हंस जेड़े ने मानसरोवर नाल प्रीत करदे ने, मानसरोवर ते रहंदे ने। भगत नामदेव जी बयान करदे ने, चकवी को जैसे सूर बाल है, चकवी जिस तरह सूर दे नाल अपने

तरनी के औरत नो कांत पति जिस तरह औरत पति नाल प्रीत कर दी इसे तरह है परमेश्वर मेरे रमैया।

वालह ऐ परमेश्वर, हर जगह हर थां जिस तरह तू है इस तरह इस नामे दे मन विच भी ऐ परमेश्वर तू है गए। ऐ नामदेव भी तेरे नाल इन्ना प्यार करदा है जिवें होर साधक सिद्ध चाहते ने कि तेरे दर्शन होण।

कबीर साहब नू गुरु दी लोड़ है, अधी रात घरों उठे गंगा घाट जा पहुंचे, जिहड़िया पौड़िया तो स्वामी रामानंद उतरिया करदे सन। कबीर साहब मूह सिर लवेट के उन्हां पौड़िया ते जाके लम्मे पै गए। इस कथा नू भाई गुरुदास जी ने अपनी पौड़ी दे विच बयान कीता है। आप स्वामी रामानंद बारे इउं अपनी पौड़ी विच लिखदे हन।

दे जाए के लम्मा पया कबीर तिथाई जेड़े रस्ते तू स्वामी जी ने लंघना सी उस रस्ते ते कबीर सब जाके लम्मे पै गए।

बड़ी मस्ती विच राम राम कर दे तुरे आ रहे ने। गंगा दियां पौड़ियां उतरन लगे, देखे आ पौड़ियां दे विचकार कोई सुता होया है। रस्ता नहीं सी क्योंकि कबीर लम्मा पिया सी। स्वामी जी कोल होए अपने पैरां दी, स्वामी जी कोल होए अपने पैरां दी ठोकर लाई कबीर दे शरीर नूं। ते कहंदे ने भांडे विच जिहड़ी चीज पाई होवे ओही निकलदी। जे किसे भांडे विच दुध पाया है तां दुध ही निकलेगा। जे किसे भांडे विच शराब पाई है तां शराब निकलेगी। पर जिहड़े महापुरश ने इन्हां दे विच तां परमेश्वर वसदा है, परमेश्वर दा नाम वसदा है तां नाम ही निकलना। स्वामी रामानंद ने पैर दी ठोकर लाई कबीर दे शरीर नूं ते नाले किया उठ राम के राम कहो, ए सौण दा वेला नहीं, ए नाम जपण दा वेला है। भाई गुरदास जी आप बयान करदे ने।

तीसरे भगत भगत तन्ना जिन्हां बारे भाई गुरुदास जी अपनी पौड़ी विच आप बयान करदे ने।

चौकी ते रखे है, रोटी पकाई अते लस्सी रिड़की, लस्सी रोटियां ठाकुर दे अगे रख के ते तन्ना हाथ जोड़ के बैठ गए। ठाकुर नो

0: परमेश्वर नू रोटी खवाई तन्ने ने भी खा ले। परमेश्वर कहन लगे लै भाई तन्ने आ रोटी तो असी खा ली हुण दस तेन चाहिदा की है। तू याद कीता मैं आया हुण मंग तेन की चाहिदा। ता तन्ने ने हाथ जोड़ ले कहन लगा भगवान मैनू ए नहीं पता कि अरदास किवें करी दी है। लोक तेरी आरती करदे ने पर मैं तेरा आरता करना। आप जी बयान करदे ने भगत अन्ना जी अपनी बाणी विच आप
1: गोपाल तेरा आरता।
0: गोपाल कहंदे ने दुनिया नू पालन वाला परमेश्वर अकाल पुरख

पोड़ी नुके भगवान पैरी सोहनी जुती पाई हो वे, सोना सूट पाया हो वे, घर विच अनाज भी हो वे, गां ते मज भी हो वे, ते किधरे आना जाना पै जावे ते पैदल तुर के जांदा फिर आदमी चंगा नहीं लगता। कपड़े चंगे पाए होन ते तुरिया जावे पैदल चंगा नहीं लगता, आना जाना भी पैंदा है दूर। इस करके कृपा कर एक ताजन तुरी चंगेरी एक सोहनी जी घोड़ी भी दे, ताकि किधरे आना जाना होवे ता ओ सफर मैं

दर्शन करन दे करके किथे जा पहुंची है ओ तन्ना अनपढ़ बाणी उचारन लग पे। उस तन्ने ते तन गुरु अर्जुन साहब ने होर कृपा की थी। तन्ने दी बाणी गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज की थी। तन्ने नु अपने नाल बठा लिया। जद भी कोई इंसान श्री गुरु ग्रंथ साहब जी नु मथा टेकद ओ भगत तन्ने नु भी मथा टेकद। भगत तन्ना जी दे शब्द गुरु ग्रंथ साहब च दर्ज ने जेड़े उपदेश करते ने ऐ भाई उस परमेश्वर दी बंदगी करो सारयां दी उपालना करन वाला है तू बंदगी कर तेरी भी उपालना करेगा। दुनिया दी चिंता छड़ दे नाम दी चिंता कर क्योंकि उदा नाम बड़ा प्यारा ते बड़ा सोहना है।

0: संत मिलो मेरे भाई मिल हर हर कथा कदो
1: आवो संत मिलो मेरे भाई मिल हर हर कथा कदो
0: आवो संत मिलो मेरे भाई मिल हर

ऐ सन्यासी, तेरा तप प्रवान हो गया। तू तप कीता, तेरा तप प्रवान हो गया है। हुण अपने तप दा फल मंग, मंग तैनू की चाहिदा।

ओ परमात्मा, ओ हरि, मेरे कारे पुत्र बन के जन्म लोगे। जिस तरह कोई मूर्ति की पूजा करता है, इस तरह मैं उसनु सामने बिठा के ओदी पूजा करा, ओदी सेवा करा, मैं भी ओदे दर्शन करा, ओदे दर्शन करके जिथे मैं मुक्ति नु प्राप्त होवां, उसे संसार दे ये लखां लोक भी

क्योंकि जैसा कोई तप करता है ओहो जिहा फल परमेश्वर वालों उसनों मिलता है। वर मिले है कुछ मिलन की खुशी, थकावट भुल गई, चेहरे ते रौनक आ गई। ए सन्यासी उठ के खड़े हुए अपनी कुटिया वाल चल पए। अगू इन्हां दी सिख्या दाता मिले, सिख्या दाता कहन लगे इस सन्यासी पिता मेहता कालू नूं, ऐ बालके तेरे चेहरे ते बड़ी खुशी, इंज जापदा है जिवें तैनूं कुछ मिले। तां इह सन्यासी कहन लगे हां सिख्या दाता, अज मैनूं मेरे तप दा फल मिल गया है। ए वर मिले है ओ नारायण, आप मेरे घर पुत्र बन के जन्म लैणगे।

तू ए वरते ले लिया। ओ नारायण तेरे कार पुत्र बन के जन्म लैण, पर बाल के पहचानन दा वर।

वो तेरे कर पुत्र बन के जन्म लेंगे। पहचानेगा कि मैं क्योंकि तू भक्ति नहीं कीती, केवल तप कीता है। पहचानन दा वार नहीं मंगया, पहचानेगा कि मैं हुण। इस सन्यासी पिता मेहता कालू जी उदास हो गए ते कहन लगे, ओ नारायण मेरे घर पुत्र बन के जन्म लेंगे।

पुत्र बन के जन्म लिया पर मैं ही तेनू पहचान ना सकिया कितना चिर सिर धरती ते रख के रोंदे रहे पर जद सिर चुकया पिता मेहता कालू जी हैरान हो गए कमरे अंदर ते अंधेरा ना गुरु नानक साहब ने ना कोई प्रकाश एकदम उठ के कमरे विच बाहर आए और अपनी घरवाली

मैं अरदास कीती मेरे घर पुत्र बन के जन्म ले, तू मेरे घर पुत्र बन के जन्म ले, तू मेरी गोद में खेड़े है।

मैं तेरे मुंह से चपेड़ में कट मारी पर तू उफ ना कीती। ऐ दाता मैनू बख्श लै। ए कहंदे होए पिता महता कालू। धन गुरु नानक साहब।

एकदम उठ के खड़े हो गए और धन गुरु नानक साहब ने अपने पिता दिया बाहां पकड़ लिया, अपने पिता नु गल दे नाल लगाया ते नाल ए कहा, पिता जी ए नानक तुहाडे पैरां ते मत्था टेके, ए तां हो सकदा है

दुनिया नमस्कारा कर दी है। वो तन गुरु नानक साहब अपने पिता नु मथा टेकदे ने ते सानू उपदेश देते ने कि पुत्र रब क्यों ना बन जावे पर मापिया तो वड्डा कदी नहीं हो सकता। मापिया विच एक वड्डा गुण है, माता पिता औलाद नु जन्म

अपने घर विच वड्यां दा आदर मान करना, पर देखदे आं एक मां बाप अठ धियां पुत्रां नूं पाल सकदा है, पर जद उही माता पिता बुढ़े हो जाण ते ओ जिहड़े अठ धियां पुत्र ने ओ एक माता पिता की पालना नहीं कर सकते। किन्नी अजीब गल है, एक मां बाप इन्ने बच्चे पाले ते जद बच्चे वड्डे हो जाते ने वह फिर माता पिता नूं कुछ दे नहीं सकते। अपने धियां पुत्रां ते हजारां रुपए खर्च कर देंगे, पर जद बुढ़े माता पिता कुछ मंगण ते फिर नूं पुत्र गुए कहिंदे ने पिता जी हाथ तंग है। कैसा

कई जगह असी गलत हो जाने हैं, क्योंकि जे असी नेक काम नहीं करते बुराइयां करते हैं तो फिर बच्चियां तो असी चंगे काम की किवें उम्मीद कर सकांगे। असी आप भी चंगे होइए और बच्चियां नूं भी चंगी सिख्या देइए ताकि स्वर्ग लभण की लोड़ ना पवे।

वाणी सवाल है और जवाब है। दुखां नूं दूर करन वाला नाम है पर किस तरह, आठ पहर आराधी, अठे पहर उहदी आराधना करिए, उहदे नाल मन जोड़िए ते दुखां दा नास होवेगा। डाक्टर भी कह दिंदा है ना, दवाई ते दित्ती है। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਖਾਈ ਜਾਣੀ ਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ जिस दिन अठवें पातशाह गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज ने इस संसार ते अवतार लिया। आओ सारे प्यार नाल एक वारी जपो जो धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कितनी श्रद्धा भावना दे नाल आप लिखते हैं, श्री हर कृष्ण ध्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। जिन्हां नूं देखण दे नाल ही दुखां दा नाश हो जांदा है। अठवें बाला प्रीतम गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज गुरुगद्दी ते बैठे, संगतां दे सद्दे ते गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज दिल्ली वल चले। दिल्ली जांदे होए कई जगह ठहरदे, संगतां नूं उपदेश करदे। हरियाणे दे विच पंजोखड़ा नाम दा एक स्थान है जिथे गुरु हर कृष्ण साहब जी आके ठहरे। बड़ी बड़ी दूरों संगतां आन लगियां। इसे पंजोखड़े जिते होर संगता आईया, एक लाल चंद नाम दा पंडित भी आया। पंजोखड़ा जिते गुरु ने चरण पाए ते पंजोखड़ा साहब बन गया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। लाल चंद दर्शन करन आया, गुरु हर कृष्ण साहब नो देखे आ।

साधु जना की अचरज अच्छा कथा। अष्टपदी। साध के संग मुख उजल होत, साध संग मल सगली खोत। साध के संग मिटाए अभिमान, साध के संग प्रगटाए सुज्ञान। साध के संग बुझे प्रवनेरा, साध संग सब होत निबेरा। साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभु महे समानी। साध के संग अगोचर मिलाए, साध के संग सदा प्रफुल्ल। साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सबकी देन, साध के संग मनोहर बहन। साध के संग न कथू तावे, साध संग अस्थित मन पावे। साध के संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत। साध संग किस से नहीं बैर, साध के संग न भीगा पैर। साध के संग नहीं को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध के संग नहीं हो ताप, साध के संग तजाय सब आप। आपे जाने साध बड़ाई, नानक साध प्रभु बन आई। साध के संग न कभू तावे, साध के संग सदा सुख पावे। साध संग बस अगोचर लहे, साधु कै संग अजर सह। साध के संग बसै थान ऊंचे, साधु कै संग महल पहुंचे। साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म। साध के संग पाए नाम नितान, नानक साधु कै कुर्बान। साध के संग सब कुल उतारे, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारे। साधु कै संग सोतन पावे, जिस तन ते सब को वरसावे। साध संग कर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुरदेवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध के संग सर्वथान गम, नानक साध के संग सफल जन्म। साध के संग नहीं कछ काल, दर्शन पेट तो होत निहाल। साध के संग कलुखत हरै, साध के संग नरक पर हरै। साध के संग इहा हुआ सुहेला, साध संग बिछड़त हर मेला। जो इच्छे सोई फल पावे, साध के संग न बिरथा जावे। पार ब्रह्म साध हृदय बसै, नानक उदर साध सुन रसै। साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ। साध के संग न मनते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै। साध के संग लगे प्रभु मीठा, साधु कै संग कट कट ढीठा। साध संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी। साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग। साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने ते ता बख्याने। साध की उपमा ते गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूंचते मूंची।

सच्चे के गुण गा गुण गावत तेरी गुण दरस लैद दिल सजाए हो मैं दुख है जन्म कर

सुपना है। हजूर बाणी विच भी बख्शिश कर दिया न, सुपने सेती चित मूर्ख लाया। ओए मूर्खा कदी सुपने भी सच्चे होए हन? सोच ए संसार भी सुपना है। जितने तियां पुत्र धन दौलत महल मारियां, जदों प्राण पंखेरू उड़नगे एक शिन विच सब कुछ पराया हो जाएगा। इसलिए ए सुपना है। सुपने नाल चित लाउन वाला मनुख कदे तोड़ नहीं अपड़े। इसलिए हजूर बख्शिश कर रहे हैं कि श्वासा नू सिमरन दी माला बना। श्वास श्वास हर नाम जप, बिरथा श्वास मत खो। क्या जाने ए अंतकाल ए श्वास मत हो। किसे नू की पता है कि जेड़ा श्वास मैं जप रहा सतनाम श्री वाहे गुरु, इस तो अगला श्वास आना के नहीं आना इसका किनू पता है। इसलिए हजूर बख्शिश कर देखन भाई, सास ग्रास बंदगी कर, श्वासा का कोई पता नहीं। एक बुजुर्ग बाबा शरीर छड़न लगा, सारा परिवार आके बेनती करन लगा, बाबा जांदिया जांदिया कोई चंगी सुमति दे जा। ए बुजुर्ग बाबा कहन लगा, मैं अपनी होंद विच अपने जीवन विच तुहानू लखां ही कमा के दिते हन, हुण मेरे श्वास समाप्त हो गए हन, ते कुछ खर्च करके कुछ पैसे दे के ते श्वास लियाओ तो मैं तुहानू सुमति दे सकदा हां, पर इस सारे परिवार ने नीवियां पा लईयां। आख्या बाबा ये श्वास तो किसी भी कीमत तो मुल नहीं मिलते। फिर ये बुजुर्ग कहन लगा, फिर यही उपदेश है कि इना अमोलक श्वासा दे नाल नाम दे लाला दे वणज करना तुहाडा संसार ते आउणा भी ते संसार तो जाना भी तनता दे योग हो जाएगा। ऐसा ना होवे ए लाल गुआच जान ते फिर तू लभदा फिरे, ए लभण वाले नहीं हन।